Good morning, good morning and good morning Chitrapati Sambhaji Nagar. You are listening MGM 90.8 FM aur RJ Adnan aapke saath hai. आज की सुबह भी वही 24 घंटे वाली है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे कंप्लेंट में गुजारते हैं और कुछ लोग इसमें चांस ढूंढ लेते हैं। ट्रैफिक होगा, काम होगा, थोड़ी थकान भी होगी, पर अगर दिल में थोड़ा सा पॉजिटिव म्यूजिक चल रहा हो तो जिंदगी का वॉल्यूम अपने आप ठीक हो ही जाता है। और इसी बात पर आज का सुविचार है कि सुबह का एक अच्छा ख्याल पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। कितना प्यारा सुविचार है ना कि सुबह का एक अच्छा ख्याल पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। तो मुस्कुराइए, चाय पीजिए और अपने दिन को सेट कीजिए हमारे साथ। और देखो, जो आप सोच रहे हो ना सुबह, पॉजिटिविटी के साथ सोचेगा, कुछ नेगेटिविटी मत सोचेगा, वरना नेगेटिव थॉट आएगा और दिन पूरा नेगेटिव गुजरेगा। तो पॉजिटिव थॉट के साथ आज के शो का आगाज करते हैं और आपकी मॉर्निंग भी गुड करते हैं मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ ही। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी बैक इन सून ऑन MGM 90.8 FM।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक लड़का था, रोज सुबह टाइम पर उठता, काम पर जाता, लोगों से मिलता और हमेशा बोलता सब ठीक है। पर सच ये था कि उसके अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। थकान सिर्फ बॉडी की नहीं थी, मन भी रोज थोड़ा थोड़ा थकता रहता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं वीक हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ? और जवाब आया, नहीं, तुम इंसान हो। उस दिन उसने एक छोटी सी चीज सीखी, जब पैर दर्द करते हैं हम बैठ जाते हैं, तो जब मन दर्द करता है उसे भी थोड़ा आराम देना जरूरी होता है। उसने हर दिन स्ट्रांग दिखना छोड़ दिया और सच बोलना शुरू किया, आज मन ठीक नहीं है। और वही दिन था।

जब उसका हील होना शुरू हुआ था। इसे सीख हमें यह मिलती है कि स्ट्रांग रहना मतलब हर वक्त मुस्कुराना ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रुक जाना, महसूस करना और एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। याद रखिए, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बस अकेला मत रहना। और ये फॉलो करना कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, देखिएगा जिंदगी गुलजार जरूर बनेगी। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life, healthy tips. You are listening MGM 90.8 FM. All is गर्मी अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है और इस मौसम का सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है अचानक से चक्कर आना। कभी ऑफिस जाते वक्त, कभी धूप में खड़े खड़े आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, राइट? तो आज बात करते हैं इसी के बारे में, क्यों आता है चक्कर और कैसे बच सकते। तो सबसे पहली बात, गर्मी में बॉडी से पानी बहुत जल्दी निकल जाता है पसीने के जरिए, और जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो बीपी लो हो सकता है और वहीं से स्टार्ट होता है चक्कर। टिप्स नंबर वन, पानी पियो, पर सिर्फ तब नहीं जब प्यास लगे, हर एक दो घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पियो। टिप्स नंबर टू, घर से निकलते वक्त खाली पेट मत निकलो, हल्का सा ब्रेकफास्ट जैसे फ्रूट या पोहा एनर्जी मेंटेन रखता है। टिप्स नंबर थ्री, डायरेक्ट धूप से बचने की कोशिश करो, कैप सनग्लासेस या दुपट्टा कुछ भी यूज करो, स्टाइल भी और सेफ्टी भी। टिप्स नंबर फोर, नींबू पानी, छाछ, कोकोनट वाटर, ये सिर्फ रिफ्रेशमेंट नहीं नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बार बार चक्कर आ रहा है या वीकनेस फील हो रहा है तो इग्नोर मत करो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि दोस्तों काम इम्पोर्टेंट है पर आपकी हेल्थ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का मिनी मंत्र, स्टे हाइड्रेट, स्टे कूल। तो इसी वजह से ख्याल रखिए अपना और हेल्दी रहिए, सुनते रहिए।

0: यहाँ से।
1: यार दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं लेते, ऐसा होता है ना आपके साथ भी? मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। हेल्थ इज वेल्थ में बात करते हैं अपने ओवर थिंकिंग और ज्यादा सोचने के बारे में। थॉट बार बार घूमने लगते हैं अपने दिमाग में तो फोकस कम होता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, पुरानी बातें रिपीट होती रहती है और फ्यूचर का टेंशन आता है कि आगे क्या होगा, कैसा होगा। अब सवाल यह है कि क्या आप भी इस थॉट साइकिल में फंसे हुए हो? तो जवाब हाँ ही होता है। तो टेंशन मत लो क्योंकि आपका भाई आ गया है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर थॉट को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। खुद से पूछो क्या ये थॉट मेरे काम का है, अगर ये मेरे दोस्त को होता तो मैं उसे कैसे हेल्प करता। तो इससे आपको अपने आप मदद मिल जाएगी। दूसरा स्टेप है, निगेटिव थॉट को जबरदस्ती हटाओ मत, बस उनकी स्पीड कम करो। हर गलती को फेलर नहीं एक लर्निंग चांस समझो। एक्सट्रीम सोच के बीच में थोड़ा बैलेंस रखो। और सबसे जरूरी बात, दिल हल्का करना भी जरूरी होता है। किसी अपने से बात करो, मन की बातें बाहर आने दो। सच कह रहा हूँ, जब थॉट बोलकर बाहर आते हैं ना तो दिमाग का बोझ आधा हो जाता है। तो याद रखिए, सोचना बुरी बात नहीं है पर सोच में ही घूमते रहना ये थका देता है। थोड़ा रुको, सांस लो और इस पल में वापस आओ, क्योंकि जिंदगी पास्ट या फ्यूचर में नहीं इस मोमेंट में चल रही है। तो इस तरीके से आप अपने थॉट्स को रुका सकते हो। बस इतनी चीजें फॉलो कीजिएगा और मुस्कान की चमकान बरकरार रखिएगा और सुनते रहिएगा।

साथ है और कुछ कुछ गानों की फरमाइश इतनी अच्छी आती है कि यार वो गाने सुनने के बाद भी बहुत फ्रेशनेस फील होती है। और मुगले आजम फिल्म से एक ऐसा ही गाना था जो कि बहुत अंडररेटेड गाना रहा, लेकिन आज भी लोगों को याद है, जो ओरिजिनल म्यूजिक लवर होते हैं उन्हें यह गाना याद है। तो आज इस गाने की फरमाइश आई है, उनका नाम है पीयूष देशमुख ने इस गाने की फरमाइश की और गाना है

गर्मी का हाल क्या कह रहा है जरा सुनते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM टेम्परेचर अपडेट में फिलहाल अपडेट यही है कि मई महीने में ना तो अब तक के पूरे हिस्ट्री में का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अपने इस साल हो चुका है शहर में, और तीसरी बार इस महीने के अंदर टेम्परेचर 43 डिग्री प्लस हो चुका है अपने छत्रपति संभाजीनगर का। 10 मई से लेकर आज तक अपने शहर में टेम्परेचर हर दिन 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. तसेच LLB नंतर करा LLM, Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: अरे भाऊ ऐक ना, तुझ्या एरियातील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आहे का की तेही ड्राय झालं? आजकाल हाच प्रश्न सध्या आपल्या शहरात निर्माण होतोय. यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. मागील 2-3 दिवसांपासून आपण बघतोय की आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये पेट्रोल पंप ड्राय झालेला आहे हे वारंवार आपल्या कानावर येते. म्हणजे ड्राय होणं म्हणजे काय? तर सिंपल, पेट्रोल पंप मधील पेट्रोल आणि डिझेल संपलेला आहे असं याला म्हणतात. तो इसी वजह से पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे की पेट्रोल पंप के ऊपर ना लंबी लंबी कतारे लगी है पेट्रोल भरने के लिए. एंड यू नो वॉट, अपने शहर में तकरीबन हर दिन 4 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल लगता है और 4 लाख लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल और डीजल अपने शहर में आ रहा है. इस वजह से के पहले पेट्रोल पंप बहुत सारे ड्राई हो रहे हैं. एंड गवर्नमेंट तो कह रही है कि उनके पास पेट्रोल अभी बहुत है लेकिन आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा. एंड महानगर पालिका के भी अपने शहर में 2 पेट्रोल पंप है. आई होप वहां पर तो भी पेट्रोल अवेलेबल होना चाहिए लेकिन सबसे पहले तो वही पेट्रोल पंप ड्राई हो जाते हैं बिकॉज महानगर पालिका के पास खुद का टैंकर है ही नहीं जो कि पेट्रोल ला सके. वो किसी और के टैंकर के जरिए अपना काम चला रहे है. अब इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं. कोई कह रहा है कि जहां से पेट्रोल आता है अपने मराठवाड़े में वहां पर छुट्टी थी इस वजह से टैंकर नहीं आया और पूरा स्टॉक खत्म हो गया. अब इसके पीछे क्या रीजन है पता नहीं लेकिन शॉर्टेज तो हो रहा है पेट्रोल का. तो जितनी जरूरत है उतना ही पेट्रोल यूज कीजिएगा और एक्स्ट्रा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरकर बाकियों को भी परेशान मत कीजिएगा वरना आप ही पूरा भरोगे तो बाकी लोग क्या ही भरेंगे. तो इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा एंड बाकी सुनते रहिएगा.
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, संभाजीनगर.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
0: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
2: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड़, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
3: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
2: सतत चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसन दिता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला आंतररुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतररुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
4: Attention future researchers and innovators.
5: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
4: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
5: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: on MGM 90.8 FM.
1: किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो तो मेरी जान, मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो, मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well, RJAdnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायची नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. Thus it's LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: हवा से बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: तक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM,
0: साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: चलने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हजार

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ।

0: combate.
1: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
2: क्या चाहिए?
1: अरे भाई देर हो गई।
2: तो मैं क्या करूँ?
1: कॉफी, कॉफी चाहिए।
2: कॉफी, कॉफी और मैं।

0: आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, जहाँ हर बात होती है थोड़ी म्यूजिक, थोड़ी बातें और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। और अगले दो मिनट में हम आपकी इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा। अगर दिन थोड़ा हेक्टिक रहा हो तो बस रिलैक्स करने का टाइम आ गया है। एक कप चाय या कॉफी के साथ बस आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मस्ती और शानदार गानों का सिलसिला। दोस्तों, शाम का समय हमेशा खास होता है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद यही वो पल होता है जब हम खुद को थोड़ा वक्त देते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं और दिल को थोड़ा हल्का महसूस कराते हैं। और अगर साथ में अच्छा म्यूजिक हो तो शाम और भी यादगार बन जाती है। तो आज के शो में होंगे आपके फेवरेट सॉन्ग्स, कुछ दिलचस्प बातें और साथ ही आपके मैसेजेस, डेडिकेशंस भी। अगर आप किसी अपने को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं या बस कहना चाहते हैं गुड इवनिंग, तो जुड़ जाइए हमारे साथ और ऑफ कोर्स सुनते रहिए MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आपकी आरजे मनीषा आपके साथ। वेल सो हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये मैंने बहुत बार सुना है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सक्सेस पाना चाहता है, सबको लगता है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे बिना ज़्यादा मेहनत किए सब हासिल हो जाए, लेकिन सच तो यही है कि ज़िंदगी में जो भी बड़ी सफलता मिलती है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है। किस्मत शायद एक मौका दे देती है लेकिन उस मौके को सफलता में बदलने का काम मेहनत ही करती है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या अपने सपनों को पूरा करना, बिना हार्डवर्क के कुछ भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। हम अक्सर दूसरों की सक्सेस देखते हैं लेकिन उनके पीछे स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रगल्स और लगातार की गई मेहनत को नहीं देख पाते। हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज़ कॉमन होती है कि कभी हार न मानने वाली मेहनत। दोस्तों, मेहनत का रिजल्ट शायद तुरंत नहीं मिले लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इसलिए अगर आप आज मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट्स धीरे मिल रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि धीरे धीरे ही सही मेहनत आपको वहाँ जरूर पहुँचाती है जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो इस शाम खुद से एक वादा कीजिए, सपने बड़े रखेंगे लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत उससे भी ज्यादा करेंगे। स्टे ट्यून्ड, एमजे 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आपके साथ इस खूबसूरत शाम में आज की हमारी छोटी सी बात है, थिंक पॉजिटिव, यानी हर हाल में पॉजिटिव सोचने की ताकत रखो। जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी हमारी कुछ प्लानिंग हिसाब से नहीं चलती तो कभी छोटी छोटी परेशानियां हमारा मूड खराब कर देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, परिस्थितियां जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सोच पॉजिटिव हो तो रास्ते खुद ब खुद मिलने लगते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इसका मतलब है कि हम हर सिचुएशन में उम्मीद देखना सीख जाएंगे। कभी कभी सिर्फ एक अच्छा थॉट, एक छोटी सी स्माइल या किसी अपने का साथ पूरा दिन बेहतर बना देता है। आज अगर कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो परेशान मत होइए, हो सकता है जिंदगी आपके लिए कुछ और बेहतर प्लान कर रही हो। खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और हर सुबह ये सोच कर उठिए, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। और सच मानिए, जब सोच अच्छी होती है ना तो एनर्जी भी अच्छी हो जाती है और वही पॉजिटिव एनर्जी हमारी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आती है। तो इस शाम एक प्रॉमिस खुद से कीजिए, चाहे हालात कैसे भी हो हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, एमजे मनारी पॉजिटिव फिल्म, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। और अब वक्त है एक ऐसे गाने की बात करने का जिसने ना जाने कितने दिलों को फीलिंग्स को आवाज दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल गाना सुन रहा है ना तू। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं और ये गाना उन्हीं में से एक है। जब भी दिल थोड़ा इमोशनल हो जाए, किसी की याद आ रही हो या बस अकेले में अपने थॉट्स के साथ बैठना हो, तब ये सॉन्ग अपने आप दिल के करीब आ जाता है। इस गाने की सबसे खास बात है कि सिंप्लिसिटी और इमोशंस। इसके लिरिक्स सीधे दिल को टच करते हैं और म्यूजिक ऐसा लगता है जैसे हर फीलिंग को परफेक्टली समझ रहा हो। शायद यही वजह है कि कितने सालों बाद भी ये गाना लोगों की प्लेलिस्ट में आज भी स्पेशल है। प्यार में फीलिंग्स बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हम जो कहना चाहते हैं वो शब्द में नहीं कह पाते, लेकिन कुछ गाने हमारी तरफ से सब कुछ कह देते हैं। सुन रहा है ना तू ये भी कुछ वैसा ही एहसास देता है। अगर आपने कभी किसी को दिल से मिस किया है, किसी का इंतजार किया है, किसी के लिए अपने इमोशंस छुपाए हैं, तो ये गाना उसे ज़रूर कनेक्ट करेगा। एंड ऑफकोर्स आप लोग कहीं मत जाना, सुनते रहना एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग and technology programs BTech 4 years after HSC, computer science and engineering, IoT, cyber security including blockchain technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhaji।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज की हमारी छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात ये है कि क्या हम टाइपिंग की वजह से अपनी राइटिंग स्किल्स को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज का समय पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। मैसेज भेजना, नोट्स बनाना या कोई काम करना हो, सब कुछ मोबाइल और लैपटॉप पर टाइपिंग से हो जाता है। पहले जहाँ घंटों बैठ कर लेटर्स लिखते थे, डायरीज लिखते थे, वही आज सिर्फ कुछ सेकेंड में मैसेज सेंड हो जाता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि अब धीरे धीरे हमारी हैंड राइटिंग और राइटिंग हैबिट्स दोनों कम होती जा रही है। कई लोगों को अब लंबे समय तक पेन पकड़कर लिखना भी मुश्किल लगने लगा है। और सच कहे तो टाइपिंग ने हमारी ज़िंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं राइटिंग की खूबसूरती भी कम कर दी है। क्योंकि दोस्तों, हाथ से लिखना सिर्फ वर्ड्स लिखना नहीं होता, उसमें इमोशंस होते हैं, पर्सनालिटी होती है। किसी अपने की हैंड राइटिंग, नोट या लेटर पढ़ने की फीलिंग्स आज भी बहुत स्पेशल लगती है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि राइटिंग स्किल्स हमारी फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन राइटिंग हैबिट को पूरी तरह छोड़ देना शायद ही सही होगा। तो क्यों ना आज से एक छोटी सी शुरुआत करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखें, चाहे अपनी वो डायरी हो, नोट्स हो या बस कुछ थॉट्स हो। क्योंकि कीबोर्ड की स्पीड अच्छी हो सकती है, लेकिन पेन से लिखे एहसास हमेशा खास रहेंगे। आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। एंड ऑफ कोर्स आज बात करेंगे हम बहुत ही खास, और वो बात है स्मार्टफोन के फायदे, यानी कैसे एक छोटा सा फोन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया। दोस्तों, आज स्मार्टफोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है बल्कि हमारी डेली लाइफ का सबसे यूजफुल साथी बन चुका है। सुबह अलार्म से दिन शुरू होता है और रात तक हर छोटे बड़े काम हम फोन के साथ करते हैं। आज स्मार्टफोन की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो कॉल्स ने दूरियों को काफी कम कर दिया है। पढ़ाई करना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, बैंकिंग करना हो या शॉपिंग, सब कुछ अब कुछ ही क्लिक्स में पॉसिबल है। और सिर्फ काम ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन एंटरटेनमेंट का भी बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। म्यूजिक, मूवीज, गेम्स, सोशल मीडिया, हर चीज़ हमारी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। अगर कहीं रास्ता भूल जाए तो मैप्स हेल्प कर देते हैं। अगर कुछ नया सीखना हो तो इंटरनेट तुरंत नॉलेज दे देता है। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी की तरह स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे स्मार्ट तरीके से यूज करें तो ये हमारी जिंदगी आसान, फास्ट और कनेक्टेड बना सकता है। आज का समय डिजिटल है और स्मार्टफोन ने हमें स्मार्टर बना दिया है, लेकिन बस जरूरत है बैलेंस बनाए रखने की, ताकि टेक्नोलॉजी हमारी मदद करे ना कि हम पूरी तरह उसी में खो जाए। आप लोग इस बात का ख्याल रखिए और सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन के नुकसान की, क्योंकि हर चीज की तरह टेक्नोलॉजी का सही बैलेंस भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी आसान जरूर बना दी है, लेकिन धीरे धीरे हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि कई बार बिना फोन के कुछ मिनट रहना भी मुश्किल लगने लगता है। सुबह उठते फोन और रात को सोने से पहले भी फोन, ये हमारी डेली हैबिट बन चुकी है। सबसे बड़ा नुकसान है टाइम वेस्ट होना। कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलता कि घंटों कब निकल गए, और इसी वजह से कई लोग अपने काम, पढ़ाई और फैमिली टाइम को भी प्रायोरिटी नहीं दे पाते। इसके अलावा ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने से हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। आँखों में दर्द, नींद की कमी, स्ट्रेस और कंसंट्रेशन कम होना, ये प्रॉब्लम्स आज बहुत कॉमन हो गई है। और दोस्तों, एक बात शायद आपने भी नोटिस की होगी, पहले लोग साथ बैठकर बात करते थे, लेकिन अब अक्सर सब अपने अपने फोन्स में बिजी रहते हैं। मतलब ऑनलाइन कनेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन रियल कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं कम हो जा रही है। स्मार्टफोन बुरा नहीं है, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, पूरी ज़िंदगी नहीं, थोड़ा समय खुद को भी दीजिए, फैमिली और दोस्तों के साथ भी बिताइए, और कभी कभी फ़ोन से ब्रेक भी लेना सीखिए। और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: वक्त आ गया है जब हमें आपसे अलविदा कहना होगा। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 FM। लेकिन जाने से पहले दिल से बस इतना कहना चाहूंगी कि आपका साथ ही हमारे शो की असली ताकत है। आज की इस खूबसूरत शाम में आपने हमें अपना समय दिया, हमारे साथ बातें की, गानों को एंजॉय किया और हर पल को खास बनाया, उसी के लिए दिल से शुक्रिया। सच कहे तो रेडियो सिर्फ आवाज का सफर नहीं होता, ये दिलों का कनेक्शन होता है और आप जैसे प्यारे लिसनर्स इस कनेक्शन को और भी खूबसूरत बना देते हैं। उम्मीद है आज का शो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आया होगा, आपके दिन की थकान थोड़ी कम हुई होगी और आपने कुछ अच्छे पल हमारे साथ बिताए होंगे। अगर हमारी बातें और गाने आपके दिल को थोड़ा भी अच्छा फील करा पाए तो हमारा साथ सफल हो गया। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा खुश रहना, अपने सपनों के पीछे चलते रहना और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना कभी मत भूलिए, क्योंकि मुस्कुराते रहने वाले लोग ही जिंदगी को खूबसूरती से जी पाते हैं। हम फिर मिलेंगे इसी शाम इसी शो में नई बातों के साथ, नई यादों के साथ, ओनली ऑन एमजे 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बीटेक 4 ईयर्स आफ्टर HSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 छत्रपति संभाजीनगर।

साथ है, और कुछ कुछ गानों की फरमाइश इतनी अच्छी आती है कि यार गाने सुनने के बाद भी बहुत फ्रेशनेस फील होती है। और मुगले आजम फिल्म से एक ऐसा गाना था जो कि बहुत अंडररेटेड गाना रहा, लेकिन आज भी लोगों को याद है, जो ओरिजिनल म्यूजिक लवर होते हैं उन्हें यह गाना याद है। तो आज इस गाने की फरमाइश आई है, उनका नाम है पीयूष देशमुख ने इस गाने की फरमाइश की, और गाना है

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ, और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था। चाय तो कम पीता था लेकिन उसे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की। कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था। कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8 FM।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।